वंतर कना शिकरी अलंबता गजा करना गौरी सुता सीधी प्रिया सुमुखा स्वर तरुण उदंदा वरगणपति।